अध्यात्म ज्योति 104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरूको लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामानमा 100% शुद्धताको ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नम्बर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्भर स्टेट धर्म

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे।

सूत्र समझदारी को सेतु FM अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामानमा 100% शुद्धताको ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नम्बर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्रणाली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: आदरणीय श्रोता यहाँ अहिले जय श्री फूड्स प्रणाली को प्रायोजन में रहेको कार्यक्रम सर्वमंगलम में श्री महावीर हनुमान जी का कई भजन सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: है इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: व्यावसायिक सन्देश पछि आदरणीय श्रोता कार्यक्रम सर्वमंगलममा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। जय श्री फूड्स प्राली द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम सर्वमंगलममा यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ श्री महावीर हनुमान जी का केही भजनहरू।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्रणाली का

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन।
0: कार्यक्रम सर्वमंगलम यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: ಸಾವೇರ್ ಚುಚ್ಚೆಪಾಟಿ
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: सौंदर्य कसलाई मन पर्दैन र संस्कार कसले भुल्न सक्छ र सौंदर्य र संस्कार जसले यहाँलाई यहाँको पहिचान गराउने छ।
0: सिल्वर पैलेस प्युखा कर्नर न्यू रोड नेपाली हस्तकलामा समर्पित सिल्वर पैलेस।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

म्यूजिक मस्ती एंड डांस द बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FM AJ 104.8 MHz.

म्यूजिक मस्ती एंड डांस बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FM AJ 104.8 MHz.

0: बोली त्यहाँ त्यो फिल्म हेर्दाखेरि भोलि मानौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्स।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। कैसे कैसे सुहाने दिनों, लाजवाब गीतों और कैसे कैसे प्यारे लोगों की याद दिलाती हैं गीतमाला की वो सालाना पायदाने और गीतमाला की छांव। उन दिनों की कितनी जवानियां आज या तो बुढ़ापे में ढल चुकी हैं या हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी हैं।

बेनम आपकी कसम का ये लाजवाब गीत भी देखी बहनों भाइयों, छांव में रह गया था उस साल, और उसी छांव से मैं आपके लिए ले आया हूं गीत उस अनोखी फिल्म का जो मेरी जिंदगी में भी एक खास मकाम रखती है, क्योंकि सावन कुमार टक की उस फिल्म हवस के क्रेडिट टाइटल्स में मेरा भी नाम आया था। जी हां, डायलॉग अमीन सायानी। मगर सच्ची बात तो यह है बहनों भाइयों कि मैंने उस फिल्म के सिर्फ दो या तीन सीन्स के डायलॉग ही लिखे, और फिर फिल्म की कहानी ने मुझे इतना नर्वस कर दिया कि मैं बिल्कुल बौखला गया। जी हाँ, मेरी आदत पर फिल्म की हीरोइन बिंदु भी खूब हंसी थी। बात यह थी बहनों भाइयों कि हवस की जो कहानी थी ना, वो एक पागलपन की हद तक सेक्सी लड़की की कहानी थी, और मेरे जैसा सीधा साधा भोला भाला इंसान उस गर्मा गर्म कहानी के संवादों को हैंडल कर ही नहीं पाया। शुक्र है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार को मुझ पर तरस आ गया, उन्होंने मेरा नाम तो क्रेडिट्स में बरकरार रखा, एक छोटा सा चेक भी मुझे भेजा, लेकिन फिर डायलॉग्स का जिम्मा खुद ही ले लिया, और साहब बड़े अच्छे संवाद लिखे उन्होंने, जिनमें से एक जुमला मुझे अब तक याद है, और वो ये कि एक दिमाग का डॉक्टर उस लड़की की हालत सुधारने के लिए उससे कहता है, मैडम आपको सेक्स की नहीं स्नेह की जरूरत है। तो भाई उसी का सेक्सी हवस से भरपूर गीत मैं ले आया हूं आपके लिए, आपके दिल के दरवाजे पर।

दोस्तों, हवस के गीत भी सावन कुमार साहब ही ने लिखे थे और संगीत जाहिर है उनकी सुरीली बीवी उषा खन्ना का था। और छांव से चुना हुआ आज का अगला गीत है उस फिल्म का जिसमें आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ही की डायरेक्शन में दूसरी बार टक्कर हुई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, यानी नमक हराम। मगर ये गीत टक्कर का नहीं था, मिलन का था, दो दोस्तों

अच्छा दोस्तों, अब हमें जरा स्पीड बढ़ाकर तय करना होगा 1974 के हिट गीतों का सफर, क्योंकि 74 और 75 के लिए गीतमाला की छाव में कि दो दो नहीं बल्कि सिर्फ डेढ़ डेढ़ वॉल्यूम्स ही हैं ना। तो लीजिए ये आई झलकें एक के बाद एक सात सालाना पायदानों की। नंबर 25 फिल्म मनचली।

रोमांस की ये तीखी मीठी खिचड़ी किन दो गजब के कलाकारों ने पकाई थी, याद है आपको? जी हाँ, संजीव कुमार और लीना चंदावरकर ने। और यही जोड़ी उस प्यारी सी फिल्म के टाइटल गीत में पायदान नंबर 24 पर भी थी।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: अच्छा अब आओ 1974 की पायदान नंबर 23 पर और बजाओ फिल्म ज्वार भाटा के प्यार का बिगुल।

0: जन्माष्टमी के त्योहार की खुशी में अपने सैकड़ों यारों के साथ हंडी तक पहुंचने की धुन में झूमते नाचते गाते चले आ रहे थे बदला के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा। वैसे बहनो भाइयों, शोर मचाना, हंगामा करना और लोगों की टांग खिंचाई करना, ये सब शत्रुघ्न सिन्हा की पुरानी आदतें थीं कॉलेज के जमाने से। जी हाँ, उन्होंने खुद मुझे बताया था।
1: अमीन साहब, मैं कॉलेज में बहुत ही ज्यादा शरारत किया करता था, तो मैं हर हफ्ते करीब 25 रुपए फाइन कॉलेज के प्रिंसिपल को दे दिया करता था।
2: अच्छा अच्छा।
1: हमारे साइंस डिपार्टमेंट में कुल 600 लड़के थे। मैंने सबको बुलाया और कहा कि जब भी मुझे फाइन होगा तुम सबको 1-1 रुपया देना पड़ेगा।
2: अच्छा।
1: लड़कों ने कहा उससे क्या होगा। मैंने कहा बेटे देखते जाओ। अब मैं मौका ढूंढने लगा कि शरारत करते वक्त पकड़ा जाऊं और मुझे जुर्माना भरना पड़े। जैसे ही नोटिस आती मैं सबसे 1-1 रुपया ले लेता।
2: अच्छा।
1: जमा होते थे करीब 550-600 रुपए, उसमें से 25 रुपए जुर्माने के भर देता और बाकी के 525 रुपए से मजे उड़ाते।
0: अच्छा बहनों भाइयों, उन दिनों कई बार ऐसा होता था कि अगर कोई गीत 1 साल में कम बजता तो उसके अगले साल सरताज बनकर रिटायर हो जाने से पहले के मार्क्स भी उस गीत में जोड़ दिए जाते थे। इसीलिए 1973 का गीत नंबर 24 1974 में फिर बजा नंबर 21 पर। फिल्म थी झील के उस पार।

अच्छा भाई, अब पायदान नंबर 20 की यादों की बारात में जरा झांक कर देखिए कि हाय हाय किसके कमरे में कौन रह रहा है।

और साहब छाव में लौटने से पहले 1974 के गीत नंबर 19 को भी जरा याद कर दीजिए। बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म चोर मचाए शोर का गीत था वो, जिसमें शशि कपूर और मुमताज की मोहब्बत जैसे तोता मैना की कहानी बन गई थी।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। अच्छा साहब, गीत माला की छाव में से अब तीन जरा अनोखे गीत मुझसे कह रहे हैं कि अमीन भाई, 1974 की लोकप्रियता की धूम ने तो हमें ठुकरा दिया, मगर आप तो हमें छाव में याद कीजिए। तो हाँ हाँ भाई, यही तो मेरा काम है यहाँ। चलिए तीन गीत छाव के सुन डालिए एक के बाद एक। पहले 1974 की उस फिल्म से जिसका नाम ठोकर आप शायद भूल गए होंगे, और बड़े ही गुणी संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी भी आपको याद नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऐसे भूले बिसरे मोती भी मैं कभी कभी चुन कर लाता हूं आपके लिए गीतमाला की छाव।

बहरों भाइयों, उसी साल एक और छोटी सी फिल्म परिणय में बेमिसाल संगीतकार जयदेव का संगीत भी गूंजा था। राग रागिनी के रसियाओं को खास तौर पर पसंद आएगा ये गाना। इसमें मन्ना डे के साथ आवाज थी बोल रे पपीहा वाली वाणी जयराम की।

ओके दोस्तों, अब जरा मुंह का मजा बदलने के लिए एक मनचले नेपाली दरबान से भी मिल डालिए गीतमाला की छाव में। एक गुपचुप गुपचुप डेवलप होने वाले रोमांस की चुगली खाई थी इस दरबार ने। फिल्म का नाम था कसौटी। बहुत पॉपुलर हुआ था ये गीत भाई, लेकिन सालाना संगीत श्रेणी तक नहीं पहुंचा।

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: हम बोलेगा तो
1: चलो तो हम बोलेगा कि बस आज का छाओं के गीतों का कोटा खत्म। अब बैठ जाइए यादों के घोड़े पर और दिल की चाल से कीजिए 1974 की पायदान नंबर 18 से नंबर 12 तक की चढ़ान। नंबर 18 पर उस साल था फिल्म नमक हराम का ये नगमा।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में दोस्तों, आजकल जब ये वॉल्यूम नंबर 38 रिकॉर्ड हो रहा है ना, यानी जून सन 2012 में, नमक हराम जैसी कई शानदार फिल्मों के सुपरस्टार राजेश खन्ना की बिगड़ती हुई सेहत की खबरों ने उनके सभी फैंस को परेशान कर रखा है। खबर यह भी है कि उनकी बीवी डिंपल कापड़िया, जो कई वर्षों तक उनसे अलग हो गई थी, उनकी हालत से दुखी होकर फिर उनके पास आ गई हैं उनकी देखभाल करने के लिए। आइए हम सब राजेश जी यानी हमारे प्यारे काका जी की तंदुरुस्ती की दुआएं मांगते हुए अब सुने उनकी 1974 की एक और हिट फिल्म का गीत, जो उस साल नंबर 17 पर बजा। फिल्म थी आपकी कसम।

0: भाई बड़ी बेचैनी से करवटें बदलते बदलते मुझे अब आपकी कसम ही नहीं बल्कि नमक हराम के भी गीतकार संगीतकार याद आ रहे हैं। गीतकार आनंद बख्शी, जिन्होंने सुनी मुझे कई बरस पहले क्या बताया था अपने सुरीले साथी पंचम यानी आरडी बर्मन के बारे में।
1: आरडी बर्मन मेरा बड़ा अजीज संगीतकार है
0: जी।
1: वैसे बेसिकली वो अपने म्यूजिक में काफी संजीदा रहता है।
0: अच्छा।
1: अदरवाइज वो काफी हद तक एक कॉमेडियन किस्म का इंसान है।
0: अच्छा।
1: कभी कभी वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें बताता है जिसे हम घंटों हंसते रहते हैं।
0: अच्छा।
1: और आरडी बर्मन को खाने का बड़ा शौक है। खाने का भी और कभी कभी खिलाने का भी।
0: अच्छा चाहिए।
1: वो खुद भी कुछ दो चार चीजें अच्छी बना लेता है।
0: अच्छा
1: जी हाँ।
0: अच्छा दोस्तों, 1974 की गीतमाला सालाना संगीत श्रेणी पर

1974 का एक और बड़ा प्यारा गीत नंबर 14 पर था। इसे सुनकर आपके दिल में उभर आएंगी देवानंद और जीनत अमान की फिल्म हीरा पन्ना की याद।

और अब आने वाला है 1974 का एक और बहुत ही लाजवाब गीत, जो उस साल की पायदान नंबर 13 पर पहुंच गया था और जो मेरे फेवरेट गीतों में से भी एक है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं इसका मुखड़ा ही नहीं अंतरा भी बजाऊंगा आपके लिए। जरा सुनिए कि कितनी नजाकत थी जानेसार अख्तर के शब्दों में और कैसी दिल में बस जाने वाली धुन बनाई थी जयदेव ने। फिल्म थी प्रेम पर्वत, जिसके बड़े काबिल डायरेक्टर और राइटर थे वेद।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अध्यात्म ज्योति 104.5।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

सारी जान के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना मातु पुत्र हित जोत पुतीना।

पांचवा अध्याय राजा कार्तवीर्य और भगवान परशुराम का युद्ध। राजा कार्तवीर्य ने अनेक बांधवों और राजाओं को भी युद्ध का निमंत्रण दिया था। इस प्रकार अनेक राजागण उनके साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे। वे सभी रत्न मणि जटित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडल आदि से सुशोभित थे। महर्षि परशुराम जी को जैसे ही सूचना मिली कि राजा कार्तवीर्य अनेक सेनाओं और बांधवों के साथ युद्ध की इच्छा से समुपस्थित हो गए हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के वे शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रविद एवं शस्त्राभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्ध भूमि में समुपस्थित हो गया। राजा कार्तवीर्य ने भगवान परशुराम जी को देखा तो तुरंत रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम करने को जा पहुँचे। भगवान परशुराम ने राजा को चरणों में पड़े देखा तो समय उचित आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजा गण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ और उधर ऋषियों का समुदाय अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रणोन्मत्त क्षत्रियों के समक्ष ब्राह्मणों की वह सेना अपनी विजय का दृढ़ विश्वास लिए खड़ी थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी उन अद्भुत युद्ध की बात सुनकर वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थी। यह कथा सुनते ही नारद जी ने पूछा, प्रभु यह तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियो से युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियो से कम थी या अधिक? भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियो से तो बहुत कम थी, फिर भी वह प्राणपण से युद्धरत थे और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करते जा रहे थे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इतनी कथा कहने के पश्चात भगवान श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही थे। उन्होंने युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था। वे सभी दाव पेंचों के जानकार थे तथा संख्या में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बड़ा हुआ था। इस कारण उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के समस्त बांधवगण और शिष्यगण उनसे हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रणागण छोड़कर भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए अथवा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचाकर भागे। परशुराम जी को उस समय यह ध्यान नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वे ना तो राजा सेनाओं को देख रहे थे ना अपने बांधवों और शिष्यों को। उन्होंने परिपूर्ण आग्नेयास्त्र का संधान कर राजा पर छोड़ा, किंतु राजा ने भी वारुणास्त्र के द्वारा उनके उस भयंकर अस्त्र का लीला पूर्वक ही शमन कर दिया। परशुराम जी का शूल से मूर्छित होना। फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम जी अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे भगवान शंकर का और श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए तब राजा को बड़ा खेद हुआ था। वे दुखित हृदय से एक और बैठ गए और मुनिवर के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा।

आपने श्री दत्तात्रेय जी से विधि पूर्वक शास्त्र शस्त्र का अध्ययन किया और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार शासन किया, जिनसे आपको सर्वत्र सुयश की भी प्राप्ति हुई है। आपने अपने ही बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हुए हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया है। मुझे भी श्री दत्तात्रेय प्रदत्त शूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उसी शूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी, किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। भगवान परशुराम जी के वचन सुनकर उस धार्मिक राजा ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, किम अधीतम किवाम दतम का पृथ्वी सुशासिता गतः कति विद्यः भूपः माद्रशः धरणीतले। मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया और क्या पृथ्वी का शासन किया, अर्थात यह जो कुछ भी किया सब तुच्छ ही था, क्योंकि मेरे समान ना जाने कितने भूपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और ना जाने किधर चले गए। उनके अनंतर उसने पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनि प्रवर। उन्होंने उत्तर दिया, उठकर युद्ध करो, रणांगण में उपस्थित होने पर क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है, युद्ध उनका धर्म और जीवन है। राजन, इसलिए युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए अन्य कोई गति है ही नहीं। राजा उठकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। पुनः घोर संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष बाण चढ़ाकर छोड़ा, जिसे परशुराम जी ने बीच में ही काट डाला। इधर राजा प्रहार कर रहे थे और उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने में लगे थे। यह देखकर मुनिवर ने राजा की ओर से हटकर पहले उसके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रकार उनके प्रहार बहुत तीव्र थे, सेनाएं उनके प्रहारों को सहन करने में समर्थ ना थीं। अनेकों वीर धराशायी होने लगे, अनेकों को भीषण आघात पहुंचा और व्याकुल होकर भागे। उन्हें भागते देखकर अन्य सैनिकों ने भी विभिन्न दिशाओं में भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। भगवान परशुराम जी का पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करना। अब भगवान परशुराम जी कार्तवीर्य के मित्रों और बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ गया था। उस युद्ध यज्ञ में अनेक राजागण हत हुए जा रहे थे। यह देखकर कार्तवीर्य ने भी भगवान श्री हरि का एवं भगवान शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपतास्त्र का संधान किया, जिसके लगने से मुनि को बहुत पीड़ा हुई और वे पुनः मूर्छित हो गए, परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता तो कभी परशुराम पीड़ित होते। अंत में भगवान परशुराम ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार ही शौनक, परशुराम जी ने इस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर्य भगवान श्री हरि के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुए तथा परशुराम जी भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परशु मात्र से क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियां आदि ने पुष्प वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी और सर्वत्र हरि नाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

छठा अध्याय भगवान परशुराम जी का कैलाश पर जाना तथा भगवान गणेश्वर का भीतर जाने से रोकना। तदंतर भगवान परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जग जननी माता पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर जा पहुँचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर भगवान द्वार पर विद्यमान थे। भगवान परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, हे भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने माता वसुंधरा को लीला पूर्वक ही क्षत्रिय विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्य और सुचंद्र जैसे महाप्राकर्मी और समर सिद्ध भूपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना परम आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परम पिता शिवजी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया है तथा दुर्लभ शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं जगतनाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ मैं अंतःपुर में जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर भगवान गणेश्वर ने कहा, आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए, शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता गुरु और राजा के सानिध्य में जाने

इससे पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले। जब वे दर्शन देना स्वीकार कर ले तभी वहां जाएं। और मुनिनाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं, आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखिए, मेरे नीति युक्त वचन सुनिए। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के सहित विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। द्विश्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्प काल ही रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहां पहुंचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना पड़ता है, परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो जाता है। ऐसा पुरुष अपने सात जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद ना करने के लिए बाध्य रहता है। यही तथ्य बहुचर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेषकर जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है उसे वे पाप अधिक दुखदायी होते हैं। गणेश्वर के यह वचन सुनकर भृगु नंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे। गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे ना हो, किंतु शिशु का शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर यदि कोई पाप होगा भी तो उसमें ही तो प्रभावित होऊंगा, आपका उससे क्या प्रयोजन हो सकता है। इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु के अंतःपुर में जाने दें, रोकिए मत। गणेश्वर बोले, मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञानांधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करो। हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहना है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुने, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्राकृत तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनके दर्शन भी तुरंत ही नहीं हो सकते। भगवान परशुराम जी का गणेश्वर जी से युद्ध। सूत जी बोले, हे शौनक जी, उस समय गणेश जी ने परशुराम जी को रुकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए भगवान गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया। यह देखकर भगवान गणेश जी ने उन्हें रोका। परशुराम जी बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। भगवान गणेश बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता। तब तक आपको यहीं रोके रखना मेरा कर्तव्य है। यदि आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो लौट जाइए, बाद में दर्शन करने आ जाइएगा। भगवान परशुराम जी ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए भगवान गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगे। तभी गणेश जी ने उन्हें पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया।
इससे भगवान परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला। तभी वहां स्वामी कार्तिकेय आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर यह क्या कर रहे हैं? गणेशवर तो तुम्हारे गुरु भगवान शंकर के पुत्र हैं, इसलिए गुरु के ही समान हैं। यदि तुम इनका वध कर बैठते तो क्या भगवान शिव शिवा की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे? परशुराम जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुम्हें गुरु पुत्र का सम्मान देता रहा हूँ, किंतु एक तुम हो कि अपनी हट ही नहीं छोड़ना चाहते। भगवान गणेश बोले, मुनिनाथ इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। इस क्रोधावस्था में तो आपको शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार है भी नहीं। देखिए, इस प्रकार वहां जाने से अनिष्ट की भी संभावना हो सकती है। मेरे विचार में तो आपका इस समय यहाँ से लौट जाना ही श्रेयस्कर है। भगवान गणेश्वर का प्राकर्म। परंतु परशुराम जी मानते ही ना थे। उन्होंने क्रोध पूर्वक भगवान गजानन को धक्का देकर हटाया। उसके फल स्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभल कर बैठ गए। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा भगवान परशुराम जी को पुनः रोक कर कहा, मुनिवर भलाई इसी में है कि आप तुरंत यहाँ से लौट जाएं। हे प्रभु, बिना परमेश्वर शिव की आज्ञा के उनके अंतःपुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपकी यह हट धर्मी सहन कर रहा हूँ। अन्यथा मैं कार्तवीर्य नहीं हूँ और ना शुद्र जंतु रूप राजाओं का समूह ही हूँ जिन्हें आपने मार डाला था। हे विप्र, क्या आप नहीं जानते कि मैं विश्वेश्वर भगवान शंकर का पुत्र हूँ? हे विप्र, अतिथि क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो। क्षण भर व्यतीत होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परम पिता के समीप चलूंगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान श्री नारायण ने यहाँ तक का उपाख्यान सुनाकर महर्षि नारद से कहा। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम जी अट्टाहस करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी भगवान गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपनी सूंड को करोड़ों योजन लंबी करके परशुराम जी को उसमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों ओर घुमाने लगे। अब परशुराम जी निरुपाय थे, उनका क्रोध ना जाने कहां लुप्त हो गया। भगवान योगी राज गणेश्वर की सूंड में लिपटकर चक्र के समान घूमते हुए भगवान परशुराम जी स्तंभित और असहाय हो गए थे। उनकी समझ में ना आया कि यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अनंत शक्ति निधान भगवान गणेश्वर ने भगवान परशुराम जी को सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहां वे प्राणार रक्षार्थ जल में तैरने लगे। यह देखकर भगवान गणेश्वर ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में लपेटकर घुमाया और भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम तथा भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के दर्शन कराए। वहां भगवान परशुराम ने रासेश्वरी श्री राधिका रानी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

0: गरौ।
1: प्ले स्टोर वा एप स्टोर बाट सजिलै नेपाल टेलिकम को एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: FM अध्यात्म ज्योतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
4: तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ एफएम अध्यात्म ज्योति।
5: सातवां अध्याय, भगवान गणेश्वर के एक दंत होने का वर्णन। इस प्रकार जामदग्नि परशुराम जी गणेश्वर की सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी के अंक में आकर गिरे। उस समय उनको चेत हो गया तथा भगवान गणेश्वर कृत स्तंभन से भी वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया तथा समस्त शक्ति से संपन्न होकर अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्न नाशक गणाधिराज पर प्रहार कर दिया। किंतु गणराज ने अपने पूज्य पिताजी के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपने ही बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उन तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगु नंदन के हाथ में पुनः जा पहुंचा। गणेश्वर का दांत टूटते ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ, धरती आकाश के साथ समस्त दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिल गए और समुद्र में ज्वार आ गया। भगवान गणेश्वर के मुख से रक्त का फव्वारा छूट निकला, लोहित धार के साथ टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा, उससे समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल होने लगा। भगवान कार्तिकेय, वीरभद्र, वैरव, नंदीश्वर एवं समस्त प्रमथ गण क्या हुआ क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। शून्य में देवता अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निद्रित अवस्था में थे, उस शब्द से उनकी निद्रा भंग हो गई। गिरिराज नंदिनी ने वह शब्द सुना तो तुरंत दौड़ी आई और द्वार लोहित देखकर शुभ्ध होती हुई बोली, पुत्र यह क्या हुआ, तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी रक्तमय हो रही है। परंतु गणेश्वर जी कुछ लज्जित से कुछ रुआंसे से मौन एवं शांत सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने माता को कुछ उत्तर ना दिया। तब माता पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय से पूछा, पुत्र तुम ही बताओ यह क्या हुआ, इनका दांत कैसे टूट गया। कुमार कार्तिकेय जी वहां उपस्थित थे ही, उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा ही था, इसलिए सब विवरण आधोपांत सुनाते हुए बोले, क्षण भर में ही ऋषि ने परशु प्रहार कर दिया, अन्यथा मैं ऐसा कदापि ना होने देता। इसी समय शिवजी भी वहां आ गए। माता पार्वती जी ने दुखित मन से इनसे निवेदन किया, स्वामिन आप समदर्शी हैं, मेरे पुत्र गणेश्वर और आपके शिष्य परशुराम में से दोष किसका है, यह निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं। हे प्रभु, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित पतित मूर्ख दरिद्र रोगी एवं जड़ पति को भी सदैव भगवान के ही समान समझती है। पतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान भास्कर भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कोई नहीं है। तब आपके अतिरिक्त इसका निर्णय कोई अन्य कर भी नहीं सकता। माता उमा का परशुराम पर क्रोध करना। उधर परशुराम जी ने भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रणत हो भय रहित रूप से उनकी सेवा करने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी ने परशुराम जी से कहा, महाभाग हे राम, तू महर्षि जमद अग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवाधिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो, तुम्हारा मन शुद्ध है इसीलिए अशुद्धता का कोई कारण नहीं समझ रही हूँ। वत्स, तुमने जगत गुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया था उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की और अब दूसरी परीक्षा गुरु पुत्र पर ही कर बैठे। पुत्र, श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरु पुत्र का ही एक दांत निर्दयता पूर्वक समूल काट डाला। यदि यही अभिष्ट था तो फिर इसका मस्तक ही क्यों काट दिया? चराचर विश्व के आत्मारूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक श्रृगाल भी वन राज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश हैं। वे हैं जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु वह हिंसा में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। यही सब देवताओं में प्रमुख होने के कारण ही प्रथम पूजा का अधिकारी बने हैं। परशुराम को निरुत्तर देखकर गिरिराज नंदनी को क्रोध आ गया और वे मुनीश्वर को मारने के लिए प्रस्तुत हुई। यह देखकर भयभीत हुए परशुराम ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। वामन भगवान का प्रकट होना वर्णन। तभी माता भगवती पार्वती जी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आता हुआ देखा। उनके परिधान, छत्र, दंड, यज्ञोपवीत आदि सभी उज्जवल थे। मस्तक पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा था। कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रत्न जटित मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनके अंगों पर रत्नाभरण थे तथा वह मंद मंद मुस्कुराते हुए माता पार्वती जी की ओर ही देख रहे थे। वह ब्राह्मण बालक अत्यंत तेजस्वी था। उनके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उनकी ओर टकटकी लगाए निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उन्हें देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर माँ भगवती गिरजा भी उन्हें प्रणाम किए बिना ना रह सकी। वस्तुतः वे साक्षात श्री हरि थे। भगवान शंकर ने उनके विराजमान होने को रत्नमय सिंहासन प्रस्तुत किया। उनके स्थित होने पर विविध उपचारों से पूजन एवं स्तवन किया। उस पूजन से संतुष्ट हुए भगवान श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल हो और इसलिए मेरा सहस्त्रसार सुदर्शन उनकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वह चाहे जो हो मेरा कृपा पात्र नहीं रहता और उसके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना गया है। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं है और ना गिरिराज नंदनी से बढ़कर कोई पतिव्रता ही है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं है और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरु पुत्र की जो अवहेलना हुई है उसका मार्जन करने के विचार से मुझे यहाँ आना पड़ा है। हे शिवे, शिव प्रिय, आप जग जननी है। गणेश्वर कार्तिकेय और परशुराम भी आपके पुत्र के समान है। आपके और शिवजी के मन में परशुराम के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए बालकों के इस विवाद में आप जो कुछ करेंगी वह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होगा। इन बालकों के मध्य जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। देव सर्वत्र ही बहुत प्रबल है और प्रस्तुत विवाद भी देव योग का ही प्रतिफल है, इसलिए दोष भी किसे दिया जाए, यह भी एक प्रबल विवाद का ही विषय बन जाएगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
3: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: देउराली।
1: सम्पर्क नम्बर
0: 9841470164,
1: 9832345454,
0: 9849528781।
2: 8वां अध्याय, भगवान गणेश्वर के वेद प्रसिद्ध अष्ट नाम। हिमगिरी नंदिनी, आपके पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध हैं। इनके 8 नामों में एक नाम, एक दंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वे 8 नाम यह हैं: गणेश मेकदंतम, चाहिरंब विघ्ननाशकम, लंबोदरम शूर्पकर्णम, गजवक्त्रम गुहाग्रजम। गणेश एक दंत, हेरंब विघ्न विनाशक, लंबोद्र शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये नाम सर्वत्र मंगल करने वाले और सर्वत्र संकटों का नाश करने वाले होते हैं। यह गणेश जी के नामाष्टक स्तोत्र अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाला होता है। जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है, वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उस स्तोत्र के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्तोत्र का पारायण करने वाला भगवान गणेश्वर की कृपा से महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। वह निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने जिस नामाष्टक स्तोत्र की इतनी महिमा कही है वह कौन सा है? उसे आप मेरे प्रति कहने की कृपा करें। उसे सुनने की मुझे अत्यंत उत्कंठा हो रही है। प्रभु, मैं भी उसका अनुष्ठान करके अपने को पवित्र बनाता हुआ धन्य हो जाऊंगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, तुम्हारा प्रश्न उचित ही है। भला कौन सा बुद्धिमान पुरुष सहज प्राप्त उस स्तोत्र की कामना ना करेगा? स्वयं भगवान नारायण ने ही नारद जी को वह स्तोत्र भी बतलाया है। भगवान नारायण ने कहा, उन वामन भगवान ने जगजननी माँ उमा को वह नामाष्टक स्तोत्र इस प्रकार बतलाया था: ज्ञानार्थ वाचको गश्चणश्च निर्वाण वाचकः, तयोरिशम परम ब्रह्म गणेशम प्रणमाम्यहम्। एक शब्दः प्रधानार्थो दंतश्च बलवाचकः, बलम प्रधानम सर्वसमादिकंदतम नमाम्यहम्। दीनार्थ वाचको हेशचरंबः पालक वाचकः, दीनानाम परिपालकम हेरंब प्रणमाम्यहम्। विपत्ति वाचको विघ्नो नायकः खंडनार्थकः, विपत्त खंडनकारकम नमामि विघ्ननायकम्। विष्णु दतेश च निविधर्यस्य लंबोदरम पुरा, पित्रा दतेश च विविधिर वंदे लंबोदरम च तम। शूर्पकारो च यत्त कर्णो विघ्नवारण कारणो, संपदो ज्ञान रूपो च शूर्पकर्णम नमाम्यहम्। विष्णु प्रसाद पुष्पम चयन्न मृधिन मुनिदत्तकम, तद्गजेन्द्र वक्त्रयुक्तम गजवक्त्रम नमाम्यहम्। गुहास्याग्रे च जातो यमा विरभुतो हरालय, वंदे गुहाग्रजम देवम सर्वदेवाग्र पूजितम। अर्थात ग ज्ञानार्थ वाचक और ण निर्वाण वाचक है। इन दोनों ग और ण अक्षरों के जो ईश्वर हैं, उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रदानार्थक और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थ वाचक और अम्ब शब्द पालक का वाचक है। इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हे रंब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्ति वाचक और नायक शब्द खंडनार्थक है। अतः जो विपत्तियों के नाशक हैं उन विघ्न नायक को

मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर को नमस्कार है। जिनके कान शूर्प के समान है तथा जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त संपदाओं के दाता तथा ज्ञान स्वरूप है, उन शूर्प कर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का निवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है, उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान परशुराम जी का श्री माँ उमा को प्रसन्न करना, गणेश जी के इन नामाष्टक स्तोत्र का उपदेश करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने भगवान परशुराम से कहा, भृगुनंदन, तुमने भगवान गणेश्वर का एक दांत तोड़कर अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक जग जननी माता पार्वती जी को संतुष्ट न कर लो। यह गिरिराज नंदनी सर्वशक्ति स्वरूपिणी प्रकृति से परे एवं निर्गुण है। इन्हीं की शक्ति से गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण भी शक्ति संपन्न हुए हैं। यह समस्त देवताओं की भी माता है, अतः स्तवन द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। भगवान परशुराम ने भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान अपने धाम को जाने के लिए प्रस्तुत होते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी ने पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और फिर माँ जगन माता माता पार्वती जी का स्तवन करने लगे। उन्होंने माता पार्वती जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित करते हुए करुण प्रार्थना के अंत में सहसा बोल उठे, रक्ष रक्ष जगन मातः अपराधम शमस्व मे, शिशु नाम पराधेन कुतो माता ही कुपयति, हे जगत जननी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए माता। शिशुओं से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कहीं क्रोध करती है क्या? अर्थात नहीं करती। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात रेणुका नंदन ने गिरिराज नंदनी के चरण पकड़ लिए और बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी से ना रह गया, उनका वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। वे बोली, वत्स, तुम चिरंजीवी हो जाओ, तुम्हें अमरत्व की प्राप्ति हो, तुम्हें गुरुदेव परमात्मा भगवान शिव की कृपा से सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो तथा तुम सर्वत्र विजय हो। सर्वात्मा भगवान श्री हरि तुम पर सदैव प्रसन्न रहें। माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त होने पर भृगुनंदन परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने सुना, सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही हैं, सर्वत्र उन्हीं का जय घोष सुनाई दे रहा है। ममता मई माता पार्वती जी परम संतुष्ट होकर अंतःपुर में चली गईं। अब भगवान परशुराम जी ने भगवान एकदंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर प्रीति पूर्वक उनका स्तवन करने लगे। इस प्रकार भगवान गणराज की प्रसन्नता प्राप्त कर परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर तप करने के लिए तपोवन में चले गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, जय श्री गणेश।

0: अध्यात्म ज्योति 104.8
1: आदरणीय श्रोता, अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम आराधना। आज बुधबारको यो प्रस्तुतिमा म यहाँलाई अब केही समय सुमधुर भजन एवं केही देव स्तुतिहरू सुनाउनेछु।
2: जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक महात्म्या दशपदन दमित देवत परिणदभ्यर्थित दाशरथि बाबा दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविट दधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचना कोसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केली गोपायित कौशिकाध्वरा रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र वृंदवंदिता प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललिता तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय जड किरण सकलधर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विबुध सरिदधि बहुल मधुगणन ललित पदनलिन रजभुप मृदित निज वृजिन जगदुपल तनुरुचिर परम मुनि वरजुमति नुता कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथा मैथिल नगर सुलोचनालोचन चकोर चंद्र खंड परशुको दंड प्रकांड खंडन शौंड भुज दंड चंडकर किरण मंडल बोधित पुंडरीक वन रुचि लुंटाकलोचना मोचित जनक हृदय शंका तंका परिहृत निखिल नरपति वरण जनक द्रुहित कुच तट विहरण समुचित करतला शतकोटि शत गुण कठिन परसुधर मुनि पर कर धृत दुरपन मत मणिज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ट्या क्रतुकर शिखरि कंतुक विकृत्युन्मुख जगदरुन्दुत जित हरिदंत दंतुरोदंत दशवदन दमन कुशल दशशत भुज मुख नृपति कुल रुधिर झरभर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पृथुक भृगुपति सुगति विगति कर नट परिधिषु परिघा अनृत भय मुषित हृदय पितृवचन पालन प्रतिज्ञावज्ञात यौवराज्या निषादराज सौहृत सूचित सौशील्य सागर भरद्वाज शासन परिगृहीत विचित्र चित्रकूट गिरी कटक तट रम्या वसथा अनन्य शासनीय प्रणत भरत मकुट तट सुघटित पादुकाग्रियाभिषेक निर्वर्तित सर्वलोक योग क्षेम पिशित रुचि विहित दुरित बल मथन तनय बलिभुगणुगति सरभस शयन तृणशक परिपतन भयचकित सकल सुरमुनि वर बहुमत महास्त्र सामर्थ्या दृगिन हर बल मथन दुरालक्ष्य शर लक्ष्या दंडकादपोवन जंगम पारिजाता विराध हरिण शार्दूला विलुलित बहुफल मख कलम रजनिचर मृग मृगयारंभ संभृत चीरभृदनुरोध त्रिशिर शिरस्त्रितयतिमिर निरासवासरकर दूषण जलनिधि शोषण तोषित ऋषिगण घोषित विजय घोषणा खरतर खरतरु खंडन चंड पवना दिसप्त रक्ष सहस्र नलवन विलोलन महाकलभ असहाय शूरा अनपाय साहस महित महामृत दर्शन मुदित मैथिली दृढ़तर परिरंभण विभव विरोपित विकट वीर व्रणा मारीच माया मृग चर्म परिकर्मित।